0: a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील और एक नया शो और एक नई शाम में एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं सबसे पहले उसके बारे में बता दें आपको. तो कल शाम जैसे कि आप जानते हैं कि फेडरल बजट की घोषणा हुई थी तो उसी पर हमारी पहली रिपोर्ट है. आज के शो में हम फेडरल बजट 2026 के बड़े फैसलों, आरबीआई गवर्नर और अर्थशास्त्रियों की चेतावनियों और सुधारों की कठिन राह पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा. इसके बाद होगी इंडिया रिपोर्ट जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें और अंत में कैनबरा से एक खास मुलाकात संतोष गुप्ता जी के साथ जिन्होंने 20 साल पहले हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी. ये रिपोर्ट दो भाग में होगी जो हम आज आपको सुनाएंगे. तो ये सारी रिपोर्ट्स एक एक करके आएंगी और उससे पहले हम सुन लेते हैं आज का न्यूज फ्लैश. बुधवार 13 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. डिसेबिलिटी समर्थकों ने फेडरल बजट में NDIS यानी नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम में किए गए बदलावों पर चिंता जताई है. इन बदलावों के तहत 2030 तक 1,60,000 से अधिक लाभार्थियों को स्कीम से बाहर करने की योजना है. इन बदलावों का उद्देश्य अगले 4 वर्षों में लगभग $38 बिलियन की बचत करना है. इसके साथ ही एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट प्रोसेस भी लागू किया जाएगा. डिसेबिलिटी एडवोकेसी नेटवर्क की चेरी बेलोसिस ने SBS को बताया है कि इस बदलाव से बनने वाले गैप को भरने के लिए एक मजबूत और उपयुक्त ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे स्किल्ड प्रवासियों को फेडरल बजट में घोषित माइग्रेशन प्रोग्राम के बदलावों से फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार 1,85,000 परमानेंट माइग्रेशन प्लेसेस में से 70% से अधिक जगह स्किल्ड वर्कर्स के लिए रखी गई हैं। इनमें से 2/3 से ज्यादा वीजा उन प्रवासियों को मिलेंगे जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। वहीं ऑफशोर यानी बाहर से आवेदन करने वाले स्किल्ड एप्लीकेंट्स के लिए केवल 55,000 जगह आरक्षित की गई हैं। बजट पेपर्स के अनुसार ये बदलाव नेट ओवरसीज माइग्रेशन को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। साथ ही रिवाइज पॉइंट्स टेस्ट में युवा, हाईली स्किल्ड और बेहतर एजुकेटेड माइग्रेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। फेडरल बजट में ये भी पुष्टि की गई है कि 2025-26 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन का आंकड़ा 2,95,000 रहेगा, जो पिछले साल के बजट फोरकास्ट से 35,000 ज्यादा है। 3 साल पहले न्यू साउथ वेल्स के एक नर्सिंग होम में एक 95 वर्षीय महिला की मौत के बाद अब डिमेंशिया पेशेंट्स की देखभाल और एग्रेसिव घटनाओं पर प्रतिक्रिया को लेकर न्यायिक जांच शुरू की जाएगी। मई 2023 में यलम्बी लॉन्च में तत्कालीन सीनियर कांस्टेबल क्रिश्चियन वाइट द्वारा टेजर चलाने की वजह से क्लेयर नोलैंड की मौत हो गई थी। उन्हें डिमेंशिया के लक्षण थे, वो गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोट लगने से दिमाग में खून बहने लगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 2024 में सीनियर कांस्टेबल क्रिश्चियन वाइट को मैनस्लॉटर का दोषी पाया गया था और बाद

0: advertising.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: ट्रेड डेफिसिट घटाना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से एक वर्ष तक सोने की खरीद से बचने की अपील भी की थी। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और आगे बढ़ने से पहले हमारी पहली रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन उससे पहले हमारा फोन नंबर आपको बता दें 04397997667, जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी संदेश भेज सकते हैं और अपना नाम जरूर लिखिएगा। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहता है। और आज एक सवाल हम मैसेज पे ये भी पूछ रहे हैं कि बिंज वॉच जो एक चीज होती है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है कि आप एक ही बार में पूरी सीरीज देख लेते हैं या पूरे सारे एपिसोड देख लेते हैं, तो अगर हम मूवीज की बात करें कि OTT के जमाने से पहले जब हम लोग फिल्मों का एक दौर था जब फोन पे स्क्रॉलिंग उतनी नहीं होती थी, तो कई सारी मूवीज होती थी जो आपको बहुत पसंद होती थी और आपकी फेवरेट बन जाती थी और आप उन्हें एक बार नहीं कई बार देखने के लिए तैयार होते थे। ऐसी कौन सी फिल्म है जो आज भी अगर TV पे आ जाए और पुरानी हो और आप देख चुके हों लेकिन फिर भी देखने का मन करता है? 04397997667 पर मैसेज करके बताइए आपकी फेवरेट मूवी जो एक से ज्यादा बार आप देख सकते हैं और हमेशा उसे पसंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और पहली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं जो है फेडरल बजट से जुड़ी। क्या रहे फेडरल बजट 2026 के बड़े फैसले और कैसे पड़ेगा इसका आपकी जेब पर असर? क्या थी RBI गवर्नर और अर्थशास्त्रियों की चेतावनी और क्यों है कठिन डगर सुधार की? जानिए इस ऑडियो पॉडकास्ट में जो प्रस्तुत कर रही है आपके लिए वृशाली जैन।
3: कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने 2026 का बजट पेश कर दिया है। इसे उन्होंने सुधारों का एक कठिन रास्ता बताया है। इस बजट के केंद्र में आवास से जुड़े टैक्स बदलाव और नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में सुधार के जरिए $35 अरब की बचत शामिल है। नमस्कार, मैं हूं वृशाली जैन और अब फेडरल बजट 2026 पर ला रही हूं वो अंश जहां चर्चा होगी कैसे लेबर सरकार इस बजट को नियंत्रित खर्च वाले बजट के रूप में पेश करना चाहती है। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों और रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलॉक ने चेतावनी दी थी कि अत्यधिक खर्च से महंगाई बढ़ सकती है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का खतरा पैदा हो सकता है। कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स अपने 5वें बजट को पेश करने की तैयारी के समय से संकेत दे रहे थे कि सुधारों की डगर कठिन ही होगी।
4: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
3: वित्त मंत्री कैटी गैलेगर ने भी चैनल 7 के कार्यक्रम सनराइज पर इसी तरह का संदेश दिया था।
5: You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
3: अब बजट पेश किया जा चुका है तो हमें साफ तौर पर पता चल गया है कि ये सुधार कैसे दिखेंगे। कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने संसद से कहा है कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध कीमतों को बढ़ा रहा है, आर्थिक विकास को धीमा कर रहा है और ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है।
4: We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury is now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in 0.5 percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
3: उन्होंने कहा कि इसीलिए ये बजट ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक तेल संकट से बाहर निकालने और ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है जो ज्यादा लोगों के लिए काम करे।
4: The core

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: प्रवासी ट्रेड वर्कर्स को कार्यबल में शामिल होने की अनुमति मिल सकेगी। हालांकि अर्थशास्त्रियों और रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलक की चेतावनियों के बाद लेबर सरकार इस बजट को नियंत्रित खर्च वाला बजट बताने पर जोर दे रही है। उनका कहना था कि अत्यधिक खर्च महंगाई को बढ़ा सकता है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का खतरा पैदा कर सकता है। कोषाध्यक्ष का कहना है कि बजट में $63.8 अरब की बचत का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS के खर्च में बदलावों से आएगा।
3: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
2: कोषाध्यक्ष जिम चामर्स का ये भी कहना था कि इस वर्ष के बजट में किए गए फैसले आवश्यक हैं।
3: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
2: SBS न्यूज से डेबोरा ग्रॉक की इस खबर को आपके लिए SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।
4: आपने अभी सुनी वृषाली जैन की रिपोर्ट फेडरल बजट 2026 से जुड़ी। अगर आपको ऐसी हमारी कोई भी रिपोर्ट फिर से सुननी है या आप से मिस हो गई है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sbs.com.au/hindi। इस रिपोर्ट से पहले हमने आज का सवाल पूछा था कि वो कौन सी मूवी है जो आप एक नहीं कई बार देख सकते हैं, और दो मैसेजेस आए हैं और बड़े मजेदार मैसेजेस हैं क्योंकि दोनों ने लिखा है कि उन्होंने कितनी बार ये मूवी देखी है। नितिन लिखते हैं कि मैंने 17 बार हम आपके हैं कौन मूवी देखिए और मैं इसे कई बार और देख सकता हूं। वहीं हिरेन लिखते हैं कि मैंने कभी अलविदा ना कहना ये मूवी देखी है पूरे 50 बार और ये उनकी सबसे पसंदीदा मूवी है। 04397997667 पर आप भी लिख भेजिए कि वो कौन सी मूवी है जो आपकी बहुत पसंदीदा है और शायद टीवी पे आए या आप उसको इंटरनेट पे देखना चाहें तो आप जब चाहें जिस वक्त चाहें उसको फिर से देखने में हिचकिचाएंगे नहीं। 04397997667 हमारा नंबर है। जब तक आपके मैसेजेस आते हैं एक एड ब्रेक लेते हैं और एड ब्रेक से वापस आकर आपको सुनाएंगे भारत की कुछ खास खबरें इंडिया रिपोर्ट में।
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है एड ब्रेक के बाद। और एड ब्रेक से पहले जो हमने एक आपको मैसेज पूछा था उसका एक और जवाब आया है। और क्यूरी से मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि कभी हाँ कभी ना, आई मस्ट हैव वॉच दिस मूवी 20 times एंड आई लव इट। आप ही अपना मैसेज भेजिए कि आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है। अभी तक हमें कभी हाँ कभी ना, कभी अलविदा ना कहना, और हम आपके हैं कौन, इनके जो फैंस हैं उन्होंने मैसेज करा है 0439799767 हमारा नंबर है। आपके जब तक मैसेजेस आते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं इंडिया रिपोर्ट, जिसमें होंगी भारत की कुछ खास खबरें।
1: भारत की अध्यक्षता में कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिनों तक नई दिल्ली में चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के चलते चीनी विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। वैसे बैठक में सदस्य देशों के अलावा साझेदार देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस बारे में बताते हैं।
2: इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन 14th and 15th May 2026। The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegations from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20. Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे पर जाने वाले हैं। इसके अलावा वे 4 यूरोपीय देशों के दौरे पर भी जाएंगे। यूएई के दौरे को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। रणधीर जायसवाल इस दौरे को अहम बताते हुए कहते हैं,
2: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का वो संयुक्त अरब अमीरात का होगा। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे बहुआयामी रिश्ते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा सुरक्षा बहुत अहम एक उसका भाग्य है। और इस दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सकें, साथ ही साथ जो व्यापार के मुद्दे पे और निवेश के मुद्दे पे भी किस प्रकार का सहयोग हो सकता है दोनों देशों के बीच में और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, सोना न खरीदने जैसी 7 अपीलें की हैं। सोना पर आयात शुल्क भी सरकार ने बढ़ा दिया है। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इसे अर्थव्यवस्था की कमजोरी से जोड़कर देख रहा है। रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% करने पर किसान संगठनों ने भी सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति बताई जाए।
3: आपने हमें कहा, हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए, वो भी करेंगे। लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। ये देश हम सब लोगों का है, ये देश हम 140 करोड़ लोगों का है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है, और आने वाले समय में कुछ महीनों में या 1 साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें।
1: प्रधानमंत्री की अपील का उनकी पार्टी भाजपा ने बचाव किया है। भाजपा इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहते हैं,
4: उस अर्थव्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं जो आज पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। जहां यूपीए के समय में इन्फ्लेशन 10 से 11 प्रतिशत होता था, आज इन्फ्लेशन की कोई बीमारी हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं लगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदिए, कम से कम एक साल तक विदेशी यात्राओं पर मत जाइए, जिससे जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम ना हो। और ये कोई मूलभूत जरूरत नहीं आम आदमी की हो सकती है।
1: प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के दबाव में काम करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। खासतौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर हमले बोल रहे हैं। गौरव भाटिया पलटवार करते हुए कहते हैं,
4: सुन ले राहुल गांधी, वो कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात करते हैं। एक एक बूंद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रगों में है खून की, वो देश हित और भारत के लिए। कॉम्प्रोमाइज कोई है तो वो राहुल गांधी है, जो विदेशी धरती पे जाके जो ताकते भारत विरोधी है उनसे बातचीत करता है, षड्यंत्र रचता।
1: पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को लगातार घेरने वाले राहुल गांधी ने सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास पर इस बारे में हुई बैठक में शामिल भी हुए। उन्होंने योग्य उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी मुहैया न करने का आरोप सरकार पर लगाया। चयन समिति को औपचारिकता बनाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने अपनी असहमति दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास में हुई बैठक में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत भी शामिल हुए थे। और अब बात नीट पेपर लीक की, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है। नीट यानी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
5: ये बार बार हो रहा है, ये गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, मुझे समझ में ना। और ये बार बार मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू आउट कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है और कोई इसको ध्यान नहीं देना दे रहे हैं। इससे पूरे हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य को ये लोग खराब कर रहे हैं।
1: आरोपों के बाद परीक्षा को संचालित करने वाली एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात एनटीए ने कही है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील। और आगे पढ़ने से पहले कुछ और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हमने पूछा था कि वो कौन सी मूवी है जो आप एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं। और किसी ने लिखा था, हम आपके हैं कौन, किसी ने कहा कभी अलविदा ना कहना, और कभी हाँ कभी ना। अब दो जो नए मैसेजेस आए हैं, सुरेंद्र चावला जी क्रैनबर्न से लिखते हैं कि देवानंद की मूवी शराबी उन्हें बहुत पसंद है और उन्हें वो कई बार देख चुके हैं। और एक और से जाया है ऋषि शर्मा का कैनबरा से, वो लिखते हैं कि शोले, आई थिंक ये न जाने कितने लोगों की फेवरेट होगी कि शोले मूवी, वो जब भी आती है वो फिर से देखते हैं। तो शराबी एक नई मूवी का नाम है जो मेरे लिस्ट में है, मैंने नहीं देखी है, मुझे लगता है बाकी मूवीज देखी हुई हैं। और इस सूची में मैं अगर अपनी पसंदीदा मूवी जोड़ूं तो दिल चाहता है जो आई थी और उस वक्त बहुत मशहूर हुई थी, और तीन दोस्तों की जो ये कहानी थी वो मुझे बहुत पसंद है। और शायद इसलिए भी क्योंकि आमिर खान मुझे बहुत पसंद है, तो वो मूवी मुझे बहुत पसंद है। और आप भी बताइए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, 04397997667 पर अपने नाम के साथ ज़रूर मैसेज करिए। और मुझे लगता है आज बहुत लोगों को बहुत सारी फिल्मों का आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये भी देखते हैं जो हमारे बाकी लिसनर्स देखते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का 04397997667 पर आपकी फेवरेट मूवी जो आप एक नहीं कई बार देख सकते हैं। एड ब्रेक के बाद आपको वापस मिलता हूँ सुनते रहिए SBS हिंदी। मेरा नाम है नबील।

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: 20 साल पहले हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी. आइए अनीता बरार के साथ उनकी इस बातचीत में जानते हैं कि अब हिंदी को लेकर वहां आगे क्या हो रहा है. जैसे मैंने पहले बताया, ये रिपोर्ट दो भाग में है. आइए सुनते हैं इसका पहला अंश.
4: नमस्कार, एसपीएस हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार. जानते हैं कैनबरा में हिंदी स्कूल के इस वर्ष फरवरी में 20 वर्ष पूरे हुए हैं और अब उम्मीद हो चली है कि हिंदी एक विषय के तौर पर प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के करिकुलम में शामिल हो सकती है. आज हमारे साथ जुड़े हैं कैनबरा से संतोष गुप्ता जी, जिन्हें हाल ही में ACT आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट अवार्ड मिला फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी कम्युनिटी सर्विस के लिए, जिसमें हिंदी लैंग्वेज स्कूल की स्थापना और अन्य संगठनों के साथ उनके काम और अब उनका प्रयास कि हिंदी स्कूली पढ़ाई में शामिल हो जाए. तो स्वाभाविक रहा उनसे ये पूछना कि कैनबरा में हिंदी स्कूल की आवश्यकता उन्हें कब और क्यों महसूस हुई, तो वो बताते हैं.
5: अनिता जी, जब मैं जो है कैनबरा आया 2005 में और मेरा बेटा उस समय केवल 1 साल का था, तो मेरे को लगा कि अंग्रेजी तो मेरे बेटे की अच्छी हो जाएगी, तो हिंदी का साथ में कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता के और जो चीजें हैं उनको कैसे उसको उसके साथ ला सकते हैं. तो मेरे को लगा कि यहाँ पर एक हिंदी स्कूल की बहुत ही आवश्यकता है. तो उस समय हम लोग ने फिर काफी लोगों के साथ मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम है हिंदी समाज ऑफ कैनबरा, और उसी के साथ फिर हमने जो है कैनबरा हिंदी स्कूल की शुरुआत की.
6: तो आसान था शुरू करना, कुछ चुनौतियां तो आई होंगे कि सब लोग आपकी तरह कैसे सोचने लग गए?
5: जी, चुनौतियां इस समय बहुत थी क्योंकि ये यहाँ पर शुरुआत थी और किसी को भी ऐसी जो है चीजों की मतलब पता भी नहीं था. तो कोई भी जैसे स्कूल शुरू करना है तो उसके लिए हमको ACT कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है. तो उसके साथ, क्योंकि जब आप किसी स्कूल में जैसे हायर करते हैं क्लासरूम्स, तो हमको क्लासरूम्स हायर करना था कोई अच्छी जगह. उस समय कैनबरा में बहुत सारे हिंदी भाषी लोग नहीं थे, वॉलंटियर्स थे, उनको दिखाना कि भाई आप आइए और हमारे साथ जुड़ के हम बच्चों को जो है 5 साल से 17 साल तक के बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं. तो उस समय काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कोई भी स्कूल में क्लासरूम करने के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, और वो सारे जो खर्चे हैं और टीचर्स को है रूम हायर करने का है, तो काफी चुनौतियां थी. लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कारवां बहुत बढ़ता गया और आज हमको बड़ी खुशी है कि हमने 20 साल पूरे किए.
6: जी, जो आपने समुदाय के लिए काम किया इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है. अब आप स्कूलों में बाकायदा पढ़ाई की तरह भी इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में भी आ जाए, तो उसकी बात भी मैं करती हूँ. लेकिन देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं आत्रेय जो इस समय 9वीं क्लास में है. तो आत्रेय, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदी के साथ में जुड़ तो गए हैं, लेकिन क्या था जिससे आपको लगा कि हिंदी सीखनी चाहिए?
7: मेरा पहले याद है कि मैं 3 साल का था और मैं दादा दादी बात कर रहे थे पापा से. और उसके बाद मेरे को नहीं आता था हिंदी उस समय, तो मैं पापा को बोला दादी दादी क्या, दादी और दादू क्या बोल रहे हैं? पापा बोले हिंदी में बात कर रहे हैं. और उसके बाद मैं बोला मैं भी हिंदी सीखूंगा. तो 3 साल से मैं 3 साल का था तब से मैं हिंदी स्कूल में जा रहा हूँ.
6: तो इसमें सबसे मजेदार बात क्या लगी थी हिंदी सीखने में और कहाँ पे लगा कि ये तो बहुत मुश्किल चीज हो रही है?
7: तो पहले साल बहुत कठिन थी. एनी लैंग्वेज इज हार्ड. मात्रा के साथ आधा आधा और सब कुछ के साथ बहुत कठिन लगा, लेकिन मेरे को लगा कि मैं इस ये करके करूंगा क्योंकि मेरे को दादी दादू और सब लोग से बात करना है.
6: वाह, क्या बात है. तो मकसद आपका

0: बात करना ही रहा, घर वालों से जुड़ना रहा, या उसके अलावा भी कोई?
1: मेरा घर वालों हुआ था, और हिंदी जैसे बाहर है तो सीक्रेट लैंग्वेज बन जाता है, क्योंकि सबको हिंदी नहीं पता, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में। आपके घर वाले को बाहर कुछ बोलना है कि यहाँ मत जाओ या इससे मत बात करो, आप बोल सकते हैं।
0: हाँ, एक हथियार बन गया आपके लिए कि तीर से कोई
1: हाँ
0: बात कर ली तो घर में आप
1: हाँ
0: हिंदी बोलते हैं।
1: हाँ इंग्लिश और हिंदी का दोनों का मिक्स है।
0: अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसमें कहीं पे क्या कुछ झिझक है हिंदी सीखने की, या कहीं लगता है कि नहीं, ये नहीं सीखनी, कोई और भाषा सीखनी है?
1: तो मैं कैनबरा के पब्लिक स्कूल में सीखा हूँ, प्राइमरी स्कूल। तो बहुत दे लोगो है कि दे वांट टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज।
0: हाँ,
1: तो एंड आई वुड थिंक इन कैनबरा हिंदी इज अ वेरी कोर पार्ट आई सीन। तो आई
0: अच्छा,
1: थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वेरी इन इफ इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द पब्लिक स्कूल्स, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, नॉट ओनली टू द हिंदी कम्युनिटी बट टू द वाइडर कम्युनिटी। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, एंड इट्स नॉट
0: मतलब
1: जस्ट अबाउट लैंग्वेज, यू विल ऑल्सो टीच कल्चर एंड ट्रेडिशंस, सो वी विल अंडरस्टैंड इंडिया एज अ होल मोर।
0: तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या कोई खास ऐसा पार्ट है कल्चर का जो आपको लगता है कि ये सबसे अलग है हमारा?
1: तो फेस्टिवल्स लाइक होली एंड दिवाली आई हैवन्ट
0: हाँ
1: सीन इन एनी अदर कल्चर। आई हैव लर्न्ड
0: हाँ
1: ओवर 3 or 4 languages, बट होली एंड दिवाली आर लाइक दे इंटरलिंक्ड ऑलमोस्ट, बट देर नॉट। सो इट्स देर वेरी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल्स।
0: तो आप भारत
1: हाँ
0: जाते हैं,
1: हाँ
0: कोई खास पसंद की जगह है भारत में आपके?
2: आत्रेय जी को भारत में कौन सी जगह पसंद है, जानते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और मैसेजेस पढ़ लेते हैं जिन्होंने भेजा है अपनी फेवरेट मूवीज के बारे में, कि उनको कौन कौन सी मूवी पसंद है। तो एक मैसेज जो आया है, एक है राजेंद्र वोरा जी क्रेगी बर्न से, वो लिखते हैं कि 2 बीघा जमीन, ये उन्हें बहुत पसंद है और ये कई बार देख सकते हैं। चेतन शाह जी लिखते हैं कि आई हैव सीन परिचय एंड छोटी सी बात मोर देन 5 टाइम्स एंड आई हैव सीन साउंड ऑफ म्यूजिक मोर देन 10 टाइम्स। तो ये शायद एक दो नए नाम हैं जो हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक और मैसेज आया है जो लिखती है, हाय आई एम नेमी, माई फेवरेट मूवी इज टार्जन द वंडर कार, और मैंने इसको लगभग 25 बार देखा है। रणधीर जी लिखते हैं कि तनु वर्ड्स मनु बहुत ही जबरदस्त मूवी है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है। और एक और मैसेज आया है ब्रिस्बेन से, सखावत इमन, माफ करिएगा अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मेरी फेवरेट मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और इसमें इस मूवी को मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार देख सकता हूं। चलिए आप भी अपने मैसेजेस भेजते रहिए 0439-799-767 पर। आगे बढ़ेंगे, एक गाना प्ले करेंगे और फिर एड ब्रेक, और फिर शो की जो एक आखिरी रिपोर्ट था उसका दूसरा भाग हम आपके लिए प्ले करेंगे।

0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और अब आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे कुछ एड्स। एड ब्रेक का वक्त हो गया, उसके बाद वापस आके कुछ गाने और अनीता जी की रिपोर्ट का एक आखिरी अंश।
1: ओजे तू, सी तू, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
4: ¿Qué es Spectrum One?
5: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
0: SBS हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है नबील और अब जो हमने अनीता जी की रिपोर्ट आपके लिए प्ले करी थी कुछ देर पहले, उसका दूसरा और आखिरी अंश सुन लेते हैं, जिसमें बात हो रही है संतोष गुप्ता जी से। और उन्होंने वहां 20 साल पहले कैनबरा में हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी, उसी पर प्रस्तुत है अनीता जी की ये रिपोर्ट जो दो भाग में थी। आइए सुनते हैं इसका दूसरा और आखिरी अंश।
6: SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार और आज हम बातें कर रहे हैं कैनबरा में हिंदी स्कूल के संस्थापक संतोष गुप्ता जी और नवीं क्लास के आत्रेय गोयल जी के साथ में। आत्रेय जी से मैंने पूछा था कि भारत में उनकी पसंदीदा जगहें कौन सी है।
7: मेरे खास पसंद जिस पापा का घर पे।
8: बॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं?
7: हाँ, मेरा फेवरेट फिल्म है हैप्पी न्यू ईयर। आपको पता क्या है वो?
8: हाँ, हाँ, और बिना सब
7: बहुत बिना सबटाइटल्स का मेरा पूरा आधा मूवी याद हो गया।
8: अरे वाह, क्या बात है,
9: क्या बात है।
7: मूवी देखते देखते कुछ लाइन बोल देते हैं।
8: अच्छा, एक बात और आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब आपने शुरू किया था हिंदी बोलना,
7: मेरे को तो याद है कि पापा के पास फ्लैश कार्ड थे। हाँ। और पूरे हिंदी अल्फाबेट का, तो अ से अनार, तो उससे मैं सीखा था। तो पूरा और अभी भी कुछ शब्द नहीं याद है, तो वैसे याद श और श वैसे याद करता हूँ मैं।
8: क्या बात है, तो यानी बचपन से सीख लेना कितनी अच्छी बात है। और दूसरी भाषा जब आप सीखते हैं तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी और चीजें सीखने को मिलती हैं और संपर्क तो बढ़ता ही है। तो संतोष जी, आप किस तरह से अपने समुदाय को इस बात के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं कि हिंदी जो है वो अब पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई जा सके, तो इसके लिए चुनौतियां क्या आ रही हैं, कैसे आप उनको इसकी तरफ ला पा रहे हैं?
9: अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी जो है बहुत तेजी से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अभी जैसे दो कल्चर, दो कंट्रीज का, हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया का काफी जो संस्कृति कल्चरल डिफरेंस है उसमें जो है पास लाने में जो सांस्कृतिक और या व्यापारिक और जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर एक दूसरे को गठबंधन करना है, तो हिंदी जो कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, और हिंदी का सबसे बड़ा जो चीज है, एक भाषा है जिसके साथ सारे लोग भारत के और भारतीय मूल के जो दूसरे देशों में है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत, तो वो एक केवल हिंदी ही है। बिकॉज अगर हिंदी को जब तक नहीं समझ पाएंगे तो वहां की जो जैसे कोई पॉलिटिकल जो वहां पे क्या पॉलिटिकल है या सामाजिक जो गतिविधियां हैं और जो वहां का जो है इकोनॉमी है उसको जोड़ने उसके साथ अगर आपको जोड़ना है ऑस्ट्रेलिया के लोगों को या ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों को ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ना है, वो बहुत जरूरी हो गया है आजकल। जैसे जो डीफेट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, यहाँ पे पिछले 6-7 सालों में संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे कि भारत ने भी यहाँ पर जगह जगह ऑस्ट्रेलिया में अपने काउंसुलेट्स खोले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने भारत में, और वो लोग जब यहाँ से जाते हैं तो वो यहाँ पर से हिंदी सीख कर जाते हैं। तो आजकल तो मेरे को बहुत आसान हो गया है और लोग बहुत उत्साहित होके केवल स्कूल में, अभी मेरे पास बहुत सारे जो है लोग आते हैं संपर्क करते हैं कि क्या आप बड़ों को भी सिखा सकते हैं।
8: जी, मैं आपसे यही पूछना जा रही थी कि आज के दौर में जो बड़े लोग हैं, जो राजनीतिक हैं या सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं, वो किसी भी सोर्स से हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन स्कूलों में उसकी पढ़ाई क्यों आवश्यक है?
9: जैसे कि आप देखिए कि अगर बच्चा जो है शुरू से सीखता है कोई भी भाषा तो
8: जी
9: वो उसको बहुत आसान होती है। एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को शुरू से मिलेगी तो उसके लिए हमारा प्रयास है। यहाँ की जो सरकार है उन्होंने भी एक सर्वे कराया था लास्ट ईयर, और ये एक चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हो गई है।
8: जी
9: उसके बेसिस पे वो लोग तैयारियां कर रहे हैं कि हमको जो है और भाषाओं की तरह हिंदी भाषाओं को भी स्थान देना चाहिए।
8: जी अभी किस स्थिति पर पहुंचे हैं आप?
9: अभी सर्वे का जो हमारा रिजल्ट्स आए हैं उनको वो लोग थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि किस स्कूल में हिंदी की शुरुआत हो। सर्वेक्षण का जो हमारा परिणाम है उसको देख रहे हैं।
8: तो क्या उम्मीद है, कब तक ये हो सकता है?
9: देखिए मेरे को तो बहुत उम्मीद थी कि शायद इस साल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जैसे कोई भी योजनाएं होती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि

0: अगले साल से जरूर किसी स्कूल में एक जगह हिंदी शुरू हो जाएगी।
1: क्यों रात्रि, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? काफी मिलेंगे लोग पढ़ने वाले, छोटे बच्चे क्या आएंगे?
2: देखिए, ये क्योंकि स्कूल में का करिकुलम हो जाता है, करिकुलम है, मैं सीख लूंगा ये थोड़ा देर के बाद। ओ, मेरे को ये अच्छा लगता है, और उसके बाद विलिंगनेस आप लर्न हो जाएंगे।
0: चीज और बोलना चाहूंगा अनीता जी, मैंने देखा है जब यहाँ पर एक नाराबंडा कॉलेज है कैनबरा में, वहां पर हिंदी और भाषाओं की तरह पिछले कई दशकों से सिखाई जा रही है, तो हमारे जो भारतीय मूल के जो विद्यार्थी आते थे वो उन्होंने हिंदी लिया ईयर 11-12 में, क्योंकि वहां पर तो है, लेकिन जो नीचे नहीं है, कोई भी प्राथमिक विद्यालय या हाई
1: हाँ
0: स्कूल में हिंदी नहीं है, तो जो अभी आपका पहला प्रश्न से पहले जो था
1: जी
0: उसके लिए, अगर बच्चे को ईयर 11-12 में हिंदी सीखना है तो अगर उसकी जो शुरुआत है वहां पर हो, पूरे कैरिकुलम के साथ हो, जैसे कि अभी जो कैनरा हिंदी स्कूल है, अभी केवल एक ही विद्यालय है जिसके बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं और वो नारबंदा में ईयर 11-12 में, तो दिस
1: अच्छा
0: एक जो रीजन है हम लोग जो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, तो उससे जो नए विद्यार्थी है उनको बहुत अच्छा एक आधार मिलेगा।
1: जी, तो इंतजार करेंगे, ये शुभकामनाएं हमारी रहेंगी। आत्रेय, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
0: और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ SBS और आपका सबसे ज्यादा, ये एक हिंदी के लिए आपका जो समर्थन है, ये सहयोग है, आप जो वर्षों वर्षों से आप हिंदी के साथ और हिंदी की सेवा में जुड़े हुए हैं, और मेरा तो बहुत ही छोटा योगदान है।
3: SBS हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं तो कुछ मैसेजेस जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्लाइड जी, क्लाइड से ब्रजेश जी हैं जिन्होंने अपनी पूरी लिस्ट भेज दी अपने पसंदीदा मूवीज की। वो लिखते हैं, अंदाज अपना अपना, शोले, गोलमाल, हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, थ्री इडियट, ये सारी मूवीज ऐसी हैं जो मैं कई बार बार बार देखना पसंद करूंगा। 04397997767 पर आप भी अपना जल्दी से संदेश भेज दीजिए शो खत्म होने से पहले और हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक गाने का, ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूं और कोशिश है कि इस गाने के बाद एक सॉन्ग रिक्वेस्ट भी आई थी उसको भी आपके लिए प्ले किया जाए। तो 04397997767 पर इंतजार है आपके मैसेजेस का, जब तक ये एंजॉय करिए ये गाना।

एस बी एस हिंदी पर आज मेरे साथ शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है नबील। एक आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं। जफर जी लिखते हैं कि मेरी फेवरेट मूवी है दिलवाले और माई फ्रेंड ऑफर्स अ फ्री डिनर टू एनी ऑफ अ फ्रेंड इफ ही एग्रीज टू वॉच दिलवाले मूवी विथ हम। तो अगर दिलवाले उनके साथ कोई देखने का वादा करता है तो वो डिनर में भी ले जाने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मूवीज के आज रिकमेंडेशन आए और बड़ा मजा आया कि हमने अपनी अपनी पसंदीदा मूवीज बनाई और इतनी सारी हो गई कि शायद मेरे लिए वो पूरी लिस्ट पढ़ना अब मुश्किल होगा। लेकिन एक आखिरी गाना पीयूष जी का रिक्वेस्ट आया था, उसके साथ खत्म करेंगे फिल्म कुर्बानी मूवी से। वो कहते हैं कि आप जैसा कोई गाना प्ले कर दीजिए। तो आपसे मिलूंगा बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया नबील के साथ जुड़े रहने के लिए। SBS हिंदी पर अलविदा और एक खूबसूरत शाम एंजॉय करिए।

0: डांसर बन गया बल्कि अपनी एक मुनफरिद पहचान भी बना ली। युशा हुसैन अब पाकिस्तान में पहले मेल डांसर के तौर पर अपना मुकाम बना चुके हैं, तहम अब भी उन्हें कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अपनी मुनफरिद मगर दिलचस्प कहानी से मुतालिक याद करते हुए युशा हुसैन ने बताया कि इब्तिदा में तो मुझे ये तक कहा गया कि तुम लड़के होकर ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई मिरासी हो, साथ ही तरह तरह के अलकबाज से भी नवासा गया।
1: हमारे यहाँ लाइक देखा जाए तो बाहर के लोग हों, आपके आसपास के लोग हों और हमारे रिलेटिव्स हों, लाइक बहुत से ऐसे बहुत अलग अलग हमको लोग मिलते हैं, हमें एक स्पेसिफिक वर्ड चिपका देते हैं, हमारे कंधे पे लाकर रख देते हैं, तुम तो मिरासी हो। वाय भाई क्यों मिरासी हो? अगर एक आर्टिस्ट कुछ सीख रहा है, कुछ करना चाह रहा है प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, तो आप उसको एक स्पेसिफिक दे दोगे मिरासी? नहीं भाई, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। कुछ बंदा अगर सीख रहा है तो उनके टीचर बेहतरीन उनको मिलते हैं, अब उनको मिरासी ऐसे नहीं बोल सकते हो।
0: बैली डांसर बनने के सफर के हवाले से उन्होंने बताया कि इस फील्ड में आने का कोई खास प्लान नहीं था, बैकग्राउंड डांसर तो बनना ही था लेकिन बैली डांस करूंगा ये कभी सोचा नहीं था।
1: एक चाहत थी, लाइक मेरी ये चाहत थी, नहीं भी देख मेरे इससे इंडस्ट्री में आया था तो लाइक मेरी माइंड में ये था कि यार मैं बैकग्राउंड डांसर बन जाऊंगा, पीछे खड़े मैं काम कर लूंगा, पैसा कमा लूंगा। तो पता नहीं दिमाग में पता नहीं कहां से आया कि मैं ये वाली डांस फॉर्म चुन लूंगा तो लाइक मैं शायद मशहूर हो जाऊंगा, मेरे माइंड में था भी नहीं, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी भी नहीं कि चलो ओके मैं ये डांस फॉर्म कर लूंगा तो लाइक मुझे बहुत से लोग पकड़ लेंगे, मेरे इंटरव्यू करेंगे तो लाइक मुझे कुछ मेरे पर लाइनअप होगी और शोहरत मिल जाएगी, फेमस हो जाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा। माइंड में तो वायरल होने का उस टाइम पता भी नहीं था। काम करना स्टार्ट किया तो बाद में पता चला कि यार पहाड़ खोदने के बराबर मेरा काम था ये। तो जब करता रहा तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, अपने काम पे बुलाया, उनके साथ काम भी किया, कमर्शियल्स किए।
0: मुआशरती रुकावटों को अबूर करके आज अपनी पहचान बनाने वाले बैली डांसर के मुताबिक जब उन्हें पहली मरतबा काम करने की पेशकश हुई और शहर में उनके पोस्टर लगे तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई।
1: ऐसे बहुत से बहुत कम हुआ है लेकिन जब हुआ तो बहुत ज्यादा खुश था। जब फर्स्ट टाइम मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई थी एंड आई वाज लाइक ओके क्या मैं करूंगा, मैं उनका कमर्शियल मैंने कमर्शियल किया उनका तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ मुझे अच्छा लगा, उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस भी शेयर हुआ। और जब एक पोस्टर लगा युशा का एक जगह पे तो वो एक ना एक मोमेंट एक बंदे की कैप्चर हो जाती है कि हाँ यार बंदे ने कुछ कर लिया।
0: युशा हुसैन के मुताबिक उनका ये सफर मुश्किलात से भरपूर था, खानदान, स्कूल के दोस्तों, रिश्तेदारों की जाने से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली, सब लोग ही तंज करते रहे, वालिद और भाई भी शुरू में काफी नाराज थे।
1: बचपन से तो बहुत से इश्यूज वगैरह भी हुए हैं, फैमिली की तरफ से भी, रिलेटिव्स की तरफ से भी, स्कूल वालों की तरफ से भी और बहुत सी जगहों पे टॉन्ट वगैरह भी बोले, बहुत अजीब अजीब से वर्ड भी बोले गए, क्या है, जनखा है, खुसरा है, चक्का है, व्हाटएवर, बहुत से स्पेसिफिक जो अलग अलग वर्ड तो बोले गए। तो फैमिली की तरफ से थोड़े से इश्यूज हुए थे तो बचपन में डैडी ने बहुत ज्यादा डांटा भी है, मेरे हाथ में चोट भी लगी थी, मेरी छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था, डैडी ने बहुत ज्यादा मारा भी था।
0: बैली डांसर के मुताबिक मेरी ड्रेसिंग देखकर लोग बातें करते थे, तहम वही लोग जब परफॉर्मेंस देखते तो दाद दिए बगैर नहीं रह सके।
1: KG1 और KG2 तो मैं उस टाइम से पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, मैडम रानी हैं, उनकी मूवीज देख के, उनके कुछ गाने देख के, माधुरी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ माधुरी का, उनके गाने देखना, उनकी चीजें देखना, उनके मूव, उनके अलाइनमेंट, उनकी नजाकत, और वही चीज फिर से अडॉप्ट करी लोगों को दिखाने के लिए एज ए परफॉर्मर। तो जब अटेम्प्ट किया इन सब चीजों को तो लोगों ने टॉन्ट भी किया कि यार ये सब चीजें क्या है, लड़का होके बैली डांस ही क्यों, कथक ही क्यों, और कोई फॉर्म नहीं है, भांड बनना है क्यों भाई, एक लड़का अगर डांस कर रहा उसको गलत नजर से क्यों देखा जा रहा है, फ्रॉक्स वगैरह बनवाए तो बहुत से लोगों ने इसको अलग तरीके से देखा कि लड़का घाघरा क्यों पहना हुआ है, फ्रॉक क्यों पहना हुआ है, लड़का क्रॉप टॉप क्यों पहना हुआ है, ये लड़का है अभी कि नहीं है, ये क्या चीज है, इसको अलग तरीके से देखना। लेकिन जब परफॉर्मेंस करने खड़ा होता था वही उनकी ना एक शट कॉल बन गया, नहीं यार ये बंदा कुछ तो करता है।
0: बैली डांसर के मुताबिक उन्हें खानदान और दोस्तों ही नहीं बल्कि कुछ उस्तादों ने भी जज करने की कोशिश की और उनके बारे में नामुनासिब अल्फाज कहे।
1: 2024 में हमारे ऑडिशन वगैरह हुए तो टीचर्स को बोला मैं बैली डांस करूंगा, तो जब बैली डांस वगैरह कर लिया तो मेरे टीचर दूसरे टीचर से मुझे थोड़ा सा जज करके बोला कि तुमने भी बैली डांसिंग की क्यों किया, ये कॉमे लूथ वाली तुमने प्रेजेंटेशन ना अपने कॉमे लूथ वाली कर दी। एंड आई वाज लाइक हैं बैली डांस कहां, कॉमे लूथ कहां, आउट ऑफ द कनेक्शन बात करके किसी को डिग्रेड करना, डिमोटिवेट करना कि वाय।
0: पहली बैली डांस परफॉर्मेंस को याद करते हुए युशा ने बताया कि उस वक्त काफी घबराहट महसूस कर रहा था, तहम साथ ही सैकड़ों लोगों के सामने परफॉर्म करने की खुशी भी हुई।
1: टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो लाइक सीन इज कि मैं थोड़ी सी शिवरिंग थी बॉडी के अंदर, थोड़ी घबराहट हो रही थी, सांस ऊपर नीचे हुआ, मतलब नॉन स्टॉप ने टीचर के गले लगा था, उनका हाथ पकड़ लिया था।

0: लेकिन मेरे टीचर वाज लाइक नहीं जाओ आग लगा दो स्टेज पे. मैं कहा चले ओके करते हैं इंशाल्लाह. फिर जा गया स्टेज पे बट आई डोंट नो थोड़ा सा उस टाइम तो जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया जाता है. लेकिन अचानक जब स्पॉट खुलता है ना आपके ऊपर और हमारे सामने हजारों की तादाद में ऑडियंस होती है तो एक बूस्ट मिल जाता है कि यार आई थिंक कुछ कर रहे हैं. लेकिन जब फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस करी थी मैं क्या बोल बा खुदा मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था और इतनी सारी फ्लैश लाइट अपने लिए देख के ना मैं थोड़ा सा लाइक हुई खुशी भी हुई सपोर्ट कर रहे हैं लोग. मैं अगर कुछ चीज कर रहा हूँ तो उसको गलत वे में नहीं देख रहे हैं उसको अच्छे वे में देख के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं.
1: पाकिस्तानी बेली डांसर युशा हुसैन भारत के मेल बेली डांसर ईशान हिलाल से काफी इंस्पायर जबकि भारतीय बेली डांसर महर मलिक के मद्दा भी है.
0: इंडिया के फर्स्ट मेल बेली डांसर है ईशान हिलाल तो मैं उनको देख बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ. लाइक उनकी थोड़ी सी जर्नी आई डोंट नो मेरी जैसी है नहीं है लेकिन वो भी पहले एक कथक डांसर थे और उन्होंने अटेम्प्ट किया था बेली डांस को तो लाइक मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही सीन था. जिनके मूव अच्छे लगते हों तो वो तो आई थिंक वर्ल्ड में आई थिंक वो सिर्फ एक ही बंदी है वो इंडिया की फीमेल डांसर है बेली डांसर है महर मलिक. फिनोमिनल परफॉर्मर है उनके मूव उनकी कमर उनकी आंखें उनके हाथ की स्नेक लाइंस. आई वाज लाइक बंदी कुछ कर रही है यार उसके मूव बहुत मजे के होते हैं तो वो आंखों से बहुत अच्छा बड़ा मजे वाला खेलती हैं. किसी को आंखों से बंदा कनेक्ट करते हैं ना अपनी ऑडियंस को कि ऑडियंस को पकड़ लेना कि चाहे 10 लोग हों या 100 लोग हों उनकी ना बस उनकी अत्यथा उनके गर्दन में रस्सी डाल के उनको पकड़ा हुआ है या अपनी आंखों से ऐसा कनेक्ट किया हुआ है ना कि वो बस एक ही जगह पे देख रहे हैं.
1: बेली डांसर के मुताबिक उन्होंने मुल्क के कई नामवर फनकारों के साथ काम कर लिया है तहम उनकी ख्वाहिश है कि अब वो किसी रोज मैडम रीमा के साथ भी परफॉर्म कर सके. आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद कुर्बान करीब आते ही पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मिशन कम कीमत में अच्छा जानवर घर लाने का होता है. हर किसी की कोशिश होती है कि जानवर खूबसूरत भी हो और कीमत भी मुनासिब हो. ऐसे में मुल्क भर में मवेशी मंडियां लग चुकी हैं जहां खरीदारों का रश बढ़ गया है जबकि व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भावताव भी शुरू हो चुका है. सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है जहां 2 लाख से ज्यादा जानवरों की खरीदो फरोख्त का अंदाजा लगाया जा रहा है. शहरी जोग दर जोग मंडी का रुख कर रहे हैं और अपने मनपसंद जानवरों की खरीदारी करने में मसरूफ हैं. सैकड़ों एकड़ पर फैली इस मवेशी मंडी में मुल्क भर से मुख्तलिफ नस्लों के जानवर लाए गए हैं जिनमें सिब्बी ब्राह्मण साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं. इमदाद अली सिब्बी बलूचिस्तान से 80 जानवर लेकर मवेशी मंडी पहुंचे हैं. वो कहते हैं फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ गए हैं जिसका बराह रास्त असर जानवरों की कीमतों पर भी पड़ा है.
2: सिब्बी से तकरीबन 80 जानवर लेकर आए हूँ. हर साल यहाँ जानवर लेकर आता हूँ तो इस साल भी हम लेकर आए लेकिन इस साल थोड़ा सा महंगा ही अगर देखें तो जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट में हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं. अच्छा इंतजाम तो मंडी के ये है कि हमें पानी फ्री मिलता है तो थोड़ा ये बेनिफिट अच्छा है हमें. और जनरल ब्लॉक के ये कि पैसे में नहीं देने होते हैं तो ये थोड़ा सा हमें ये कि थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं इंतजामिया वाले तो चलो चल जाता है. बाकी रही बात कारोबार की तो देखें यहाँ व्यापारी आते खरीदार आते हैं वो जानवर ज्यादातर सिब्बी की पसंद करते हैं साहिवाल के. हर किसी की अपनी चॉइस होती है पसंद होती है लेकिन वो सब कहते हैं कि रेट ज्यादा है. भाई रेट ज्यादा है आप सब जानते हैं. देखिए चलो इंतजामिया कोऑपरेट कर रही है वो चारा जो है जितना ला सकते हैं लेकर आए बाकी यहाँ से हमें खरीदना होता है. पानी फ्री दे रहे हैं लाइट वगैरह है तो चलो समझ में आता है. अच्छा अगर हम बात करें तो देखिए खरीदार जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं. उनको सिब्बी के जानवर भी चाहिए होते हैं उनको फिर वो साहिवाल नस्ल के चाहिए होते हैं देसी चाहिए होते हैं. तो हमारे पास जो सिब्बी के जानवर है वो सबसे ज्यादा जो है वो पसंद किए जाते हैं. शहर के लोग जो पसंद करते हैं उनकी हाइट कुछ ज्यादा होती है.
1: मंडी का रुख करने वाले एक शहरी इमरान ने हमें बताया कि वो 3 लाख रुपए लेकर घर से निकले हैं तहम अभी तक उन्हें जानवर नहीं मिल सका. उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही इस रकम के इवज जानवर खरीदने में कामयाब हो जाएंगे.
3: 3 लाख रुपए अपने साथ लेकर आया हूँ तो ये है कि अभी तो जानवर की तलाश जारी है और पिछले साल की निस्बत जो है इस बार थोड़े रेट हाई है. जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा हुआ है. अभी तक तो जानवर की तलाश मेरी जारी है. कोशिश है कि मैं अपने रेंज के हिसाब से जानवर ले लूंगा. भावताव मेरा तो अभी तो जारी है बार्गेनिंग करने में लगा हूँ तो उम्मीद है कि है ना मान जाएंगे क्योंकि इसी मंडी से हमारे मोहल्ले के भी काफी है ना एरिया के लोग काफी है ना जानवर लेकर आए और मुनासिब दामों पे लेकर आए. मैंने जब भी इस मंडी का रुख किया है.
1: एक और शहरी अस्जिद भी शिकवा करते हैं कि जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं.
4: मंडी में आए हुए हैं जानवर देखने के लिए और बड़ा रश लगा हुआ है. हमेशा की तरह जानवर अब भी महंगा है. भाई वो दौर पुराने होते थे जो सस्ते जानवर मिल जाते थे. अब तो हाथ रखो जानवर तो 8 लाख 9 लाख. कोशिश कर रहे हैं काफी देर से तो घूम रहे हैं लेकिन अपने मतलब का जानवर नहीं मिल रहा.

0: कुछ एक आध जानवर मिले अपने मतलब के, लेकिन उस हिसाब से वो चीज नहीं है। अब हमें चाहिए जानवर जो 8 लाख का कह रहे हैं, हमें वो 4 लाख में चाहिए। अब कोशिश करते करते पूरी मंडी ही घूम गए, बाकी इंतजाम बड़े अच्छे किए हैं भाई। पुराना दौर याद आता है, 2010-11 वाला, जानवर पे हाथ रखते थे तो भाई लाख रुपए में आपको एक अच्छा सा 7-8 मन का जानवर मिल जाता था, और जब लेके आते तो बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश। अब तो बस देख घूमते रहो, आपको 1 मन का 2 मन का जानवर भी जो है ना वो लाखों रुपए में मिलेगा, जो आपकी आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये जानवर। अब लगे हुए ढूंढ रहे क्या करें, अगर मिलता है ठीक है, नहीं तो अब आएंगे, अभी तो खैर टाइम है। खैर अब घूम रहे हैं, दुआ करें मिल जाए।
1: दूसरी जानिब तर्जुमान मवेशी मंडी साकिब आलम ने बताया कि रवां बरस 2 लाख से ज्यादा जानवरों की मंडी में आमद मुतवक्के है, जबकि साथ ही उन्होंने कहा कि शहरियों के लिए मंडी में पार्किंग, बैंकिंग समेत दीगर सहूलियात मुयसर की गई है।
2: इस साल मुमकिन तौर पे जानवरों की आमद जो है वो 2 लाख से जायद मुतवक्का है। 1.25 लाख के करीब जानवर इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। सिक्योरिटी के हमने मौसर इंतजाम किए हैं। शहरियों की सहूलत की अगर बात की जाए तो इनको महफूज पार्किंग प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे फूड स्ट्रीट कायम की गई है। इस मवेशी मंडी में बैंकिंग की सहूलत भी मौजूद है। अगर कोई कैश लेके नहीं आना चाहता है तो यहाँ पे वो डिजिटल बैंकिंग के जरिए भी जो है अदायगियाँ कर सकता है।
1: साकिब आलम के मुताबिक मुल्क भर से आने वाले जानवरों की मंडी में आमद से कबल उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसके बाद ही जानवरों को मंडी में आने की इजाजत दी जाती है।
2: साथ ही साथ अगर आप जानवरों के हवाले से बात करते हैं तो कोई भी जानवर जो है वो बगैर वेटनरी डॉक्टर्स की चेकिंग के बगैर यहाँ पर नहीं आ सकता। जो हमारा मार्शलिंग एरिया है वहाँ पर वेटनरी की टीम मौजूद है जो कि जानवरों को चेक करती है, उसके बाद ही जानवर जो है वो मवेशी मंडी के अंदर आते हैं।
1: तर्जुमान के मुताबिक व्यापारियों को उनके जानवरों के लिए मुफ्त पानी और साथ ही मुनासिब कीमत में चारा भी फराहम किया जाता है। SBS उर्दू के लिए ये रिपोर्ट पाकिस्तान से एहसान खान ने पेश की।
3: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए। फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
4: जी सामईन, तो इसके साथ ही आपको लिए चलते हैं नशरियात के तीसरे और आखिरी वक्फे की जानिब, जिसके बाद खुशामदेद ऑस्ट्रेलिया के किस्त में जानेंगे कि बढ़ती महंगाई में किस तरह अपने माली इंतजामात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम इस छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या एप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। SBS उर्दू की براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں SBS ساؤتھ ایشین پر اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار۔ سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں مالی انتظامات کی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، جہاں اس وقت ٹیکس زیر بحث ہیں، جہاں اس وقت بجٹ زیر بحث ہے، جہاں اس وقت بجٹ میں کی گئی کٹوتیاں زیر بحث ہیں، وہیں یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ وہ افراد جو رہن پہ رہتے ہیں یا وہ افراد جن کے گھر رہن پر ہیں یا وہ افراد جو گاڑیوں کی اقساط ادا کرتے ہیں وہ کس طرح اپنے مالی انتظامات کو بہتر بنا سکتے ہیں، جبکہ شرح سود میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بہت سے افراد اس بات سے لاعلم ہیں کہ آسٹریلیا میں اگر آپ مالی مشکلات سے دوچار ہیں تو آپ کو بینک یا کریڈٹ فراہم کرنے والے ادارے سے مالی مشکلات کے انتظامات کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، جبکہ مشیروں کو صحیح معلومات اور عملی اختیارات فراہم کرنے کے لیے کسی شخص کی

कंगना रनौत दी आने वाली फिल्म दा नाम भारत भाग्य विधाता है। मेकर्स ने इसका पोस्टर रिलीज करके रिलीज डेट का खुलासा किया है। फिल्म विच भारत दे उना हीरोज दी कहानी दसी जाएगी जो अनसुनी है। भारत भाग्य विधाता फिल्म 12 जून नु सिनेमा घरां विच रिलीज होगी। बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो 29 मई 2026 नु रिलीज होगी। ए फिल्म भारतीय सुपर हीरो जॉनर विच एक बिल्कुल नवा अते इमोशनल रंग जोड़दी नजर आंदी है। फिल्म एक अजही दुनिया विच लेके जांदी है जिथे कल्पना मासूमियत अते रहस्य मिलके एक अनोखा सिनेमाई एक्सपीरियंस रचदे ने। टाइटल ट्रैक दी इमोशनल फील अते एतबार दी दिल नू छू लैण वाली गहराई दे बाद हुण चांद मेरा दिल दे मेकर्स लेके आए ने खासियत। फिल्म 22 मई 2026 नू दुनिया भर विच ग्रैंड रिलीज